0: फतेह जर्द को मौजूदा 16 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 200 मिलियन डॉलर तक करने के लिए अमन इकदाम पर इतफाक किया है। पाकिस्तान से आज़म शहबाज शरीफ के हमराह किर्गिस्तान के दारकुमत बिश्केक में इंग्लिश कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किर्गिज सदर सादरी जापारोफ ने कहा, बिश्केक इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात को एक नई सतह तक पहुंचाने का ख्वाहां है। उन्होंने कहा, इतनी मुख्तसर मुद्दत में हमारे मुल्क के दरमियान आला सतही रबते मजबूत, बाहमी इतमाद, किर्गिज पाकिस्तान ताल्लुकात को एक नई सतह तक पहुंचाने के हमारे मुश्तरक अजम का वाजिया सबूत है। जापारोफ ने शरीफ के साथ बातचीत को माना खैज करार दिया, कहा कि दोनों मुल्क ने इक्तसादी रवाबत को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है। उन्होंने कासा 1000 मनसूबे को खास अहमियत का हामिल करार दिया, जो वस्ती एशिया की तवानाई सलाहियत को जनूबी एशिया की बढ़ती हुई तवानाई जरूरिया से जोड़ता है। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान किर्गिस्तान आइंदा 2 सालों के अंदर दो तरफा तजारत को 200 मिलियन तक बढ़ाने के लिए काम करने पर इत्तफाक किया है। उन्होंने बताया, मौजूदा तजारती हजम दोनों मुल्क के ताल्लुकात की मजबूती की अक्कासी नहीं करता। दोनों अफ्रीकन तजारती तोसी नकल हमल के रवाबत को बेहतर बनाने के इकदाम के हिस्से के तौर पर तजारती ट्रांजिट के एक माहदे को भी हतमी शक्ल दी। रहनुमाओं की क्यादत में तजारत, तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, सेहत, मोहलती तहफ़ सिक्योरिटी और दीगर शोबों का अहाता करने में मुतद माहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमरीकी अफवाज आबने हुरमुस के करीब ईरानी अहदाफ पर हमले कर रही हैं। अब तहरान को खबरदार किया है कि अगर उसने जवाबी कार्रवाई का रास्ता चुना तो उसके नतायज तबाहकुन होंगे। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए इस हमले को एक बड़ा और ताकतवर हमला करार दिया और लिखा कि अमरीका आबने हुरमुस के करीब ईरानी अहदाफ को निशाना बना रहा है। ट्रंप ने वाज़े किया कि यह इकदाम ईरान की जानब से आबने हुरमुज में समंदरी बारूदी सुरंगें बिछाने की नाकाम कोशिश और उर्दन में एक अमरीकी अड्डे पर मिज़ाइलों की बौछार के जवाब में उठाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले तमाम 8 मिज़ाइलों को कामयाबी से मार गिराया गया है।
0: इसराइल की जानब से गजे में किए जाने वाले कतलाम के खिलाफ तुर्किया की तरफ से बैन अवी सतह पर मजीद एक तारीखी कदम उठाया गया है। इस्तांबुल बार एसोसिएशन नंबर 2 का वफद इसराइल हुकाम की जानब से सरजद करदा जंगी जराय नस्ल कुशी से अमूतलक तैयार करदा जामिया इजाफी सबूती फाइल हॉलैंड के शहर दी हेग में कायम बैन अवी फौजदारी अदालत में पेश करने के लिए नीदरलैंड्स में मौजूद है। इस वक्त ने हॉलैंड के सफर पर रवानगी से पेशतर इस्तांबुल एयरपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट यासीन शामी ने इस बात पर जोर दिया, गजा में शहीद होने वाली खवातीन, बच्चों के हकूक, मजलूमों के इंसाफ के मुतालबे को दहेज ले जा रहे हैं। बैन अवी फौजदारी दल को पेश की जाने से इजाफी फाइल में भूख का शिकार होने वाले शीरखार बच्चों, शहरी हलाकतों को दस्तावेज शक्ल में महफूज करने वाले 119 तारीखी तस्वीरी रिकॉर्ड, मुतासरी के बयान, 9 अलहदा सबूती किताबचे शामिल हैं।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना मुमकिन नहीं है क्योंकि रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग जीत रहा है। पुतिन ने कई हफ्तों के बाद कल बरोज मंगल जंग के हवाले से अपनी मुफस्सल तरीन गुफ्तगु में रूस के अंदर किए गए यूक्रेनी हमलों से नुकसान पहुंचने का एतराफ़ किया और कहा कि खास तौर पर ड्रोन एक बड़ा मसला बन रहे हैं। सहाफ़ियों से बातचीत में पुतिन ने महाज़ जंग में रूस की पेशकदमी पर जोर दिया और कहा कि मुझे इसमें कोई शक नहीं कि दुश्मन आखिरकार टूट जाएगा, ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा कब होगा। उन्होंने इन अफवाहों को भी कि रूस को नए फौजी भर्ती पर मजबूर होना पड़ेगा हर्जा सराय करार दिया। पुतिन ने दावा किया है कि रूसी फौजियों ने अगस्त के दौरान यूक्रेन के मशरकी इलाके दुनेस्क में 270 मुरबा किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे में ले लिया है और बड़ी तादाद में यूक्रेनी फौजी मुहासरे में आ गए हैं। सदर पुतिन ने कहा है कि रूसी अफवाज स्लोवियांस्क और करामोतुर्स्क शहरों की जानब पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। इलावा अजीम मास्को की अफवाज यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले की भी तैयारियां कर रही है। वाज़ह रहे कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इससे कबल फिजाई कंपनियों और मुसाफरों को खबरदार किया था कि जंग के दौरान रूसी फिजाई हदूद मुकम्मल तौर पर गैर महफूज रहेंगी और वहां यूक्रेनी ड्रोनों की बड़ी तादाद मौजूद होगी। पुतिन ने ज़ेलेंस्की की जानब से फिजाई कंपनियों को दी गई इस वार्निंग को रियासती दहशतगर्दी करार दिया और कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो मास्को इसका जवाब देने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेगा।
0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया में आने वाली खबरों को मुस्तरद कर दिया है, जिनमें कहा गया कि वॉशिंगटन इंतजामिया ईरान को मुसा

0: आकरा मेज पर लाने की कोशिश कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस मामले से मुतालिक एक पोस्ट जारी की। एबीसी न्यूज के इस दावे को रद्द करते हुए कि वॉशिंगटन इंतजामिया तेहरान को मुजाकराती मेज तक लाना चाहती है, ट्रंप ने कहा ईरान के लिए कोई वक्त न होने मुहदे पर दस्तखत करना या न करना हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। ट्रंप ने कहा अमरीका की मौजूदा स्ट्रेटेजिक पोजिशन कहीं ज्यादा मजबूत है, अपना हुर्मुज तकरीबन मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में है।
1: मिस्र के जजीरा नुमा इलाके सीना में सुबह के वक्त पेश आने वाले बस हादसे में 16 अफराद हलाक हो गए। सियाहती कस्बों दहाब और नुबिया के दरमियान सफर करने वाले एक मुसाफिर बस के बेकाबू होकर उलटने के नतीजे में इस हादसे में 28 अफराद जख्मी भी हुए। वजारत सेहत ने बताया कि जख्मियों को मुंतकिल करने और इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए जाए वकूआ पर 20 एम्बुलेंसें भेज दी गई हैं।
0: इसराइल पुलिस के सरबराह की जान से मकबूजा मकबी किनारे में फलस्तीनियों पर होने बढ़ते हुए हमलों बैन अक्वामी बरादरी में इसके असरात के हवाले से एक हैरानकुन इतराफ किया है। इसराइल पुलिस के कमिश्नर डेनी लेवी ने कहा फलस्तीनी जमीनों पर गासपाना कब्जा करने वाली इसराइल की पुरतशद कार्रवाई की बिना पर पूरी दुनिया इसराइल को एक बदमाश मुजरम रियासत तसव्वुर करने लगी है। यदियुद अखबार में शायरी रिपोर्ट के मुताबिक बंद कमरा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर लेविन इस बात पर जोर दिया मगरबी किनारे में इसराइल ग्रोहों की जानब से किए जाने वाले नस्ली जराइम ने मुल्क के तशख्स को शदीद ज़द पहुंचाई है। कमिश्नर लेविन ने अपने बयान में कहा इसराइल ग्रोहों का सिर्फ एक ही मकसद वह है फलस्तीनियों पर हमले करना, उसके नतीजे में पूरी दुनिया हमें एक बदमाश कातिल रियासत के तौर पर देखती है। अब तो हमारे इतिहादी अमरीकी भी सूरत हाल से तंग आ चुके हैं।
1: अज़रबैजान के हुक्काम ने बताया है कि मंगल और बुध की दरमियानी रात एक असलहा डिपो में लगने वाली आग के नतीजे में धमाके शुरू होने के बाद 5,000 अफराद को वहां से निकाल लिया गया है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हंगामी हालात दिफा और दाखिला की वजारतों के मुश्तरका बयान के मुताबिक ये आग मगरबी ज़िला गोरानबोए के गाँव निज़ामी के करीब वाक़ एक डिपो में लगी। हंगामी हालात और दिफा की वजारतों के अमले ने पुलिस और मकामी हुकाम के साथ मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया और सूरत हाल को काबू में कर लिया। गोरानबोए के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सीमूर नजारोफ ने सहाफ़ियों को बताया कि निज़ामी और उसके हमसाया गांव खुलू के 5,000 रिहायशियों को करीबी इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आग अभी तक लगी हुई है और वक्फे वक्फे से धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं, ताहम आग को फैलने से रोकने और उसे बुझाने के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी घर को नुकसान नहीं पहुँचा और ना ही किसी की मौत, ज़ख्मी होने या किसी बड़े नुकसान की इत्तला मिली है।
0: चीनी सदर शी जिनपिंग दो रोज़ा दौरे पर मिस्र पहुंच गए हैं। नादिर दौरा कई माह से जारी मशकूस्ता जंग के असरा के तनाज़े में बीजिंग काहर के अपने मुक्तसाद मफादात को महफूज और बाहमी रवाबत को मजबूत बनाने की ख्वाहिश के महरक के साथ तय पा रहा है। मंगल के रूस काहर पहुंचने पर मिस्री सदर अब्दुल फतह अल-सीसी के अहलिया हवाई अड्डे पर शी जिनपिंग उनकी अहलिया पेंग ली युआन का मिस्री लोक रक्स मुजाहरे के साथ इस्तकबाल किया। ईरानी तेल के बड़े खरीदारों में शामिल मुल्क चीन इस तनाज में खुद को एक गैर जानदार फ्रीक के तौर पर पेश करता रहा है, मुतअद्दिद बार मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर चुका है। मिस्री राय प्लाक के मुताबिक शी जिनपिंग आज बरोज बुध सदर अल-सीसी से मुलाकात करेंगे। मुजाकरात में गजा जंग, ईरान के साथ तल्लुकात, बोहरा अहमर और आबना हुर्मुज में बहरी नकल हमल के मामलों पर बातचीत मुतवक्को है।
1: गुज़िश्ता हफ्ते चीन और नेपाल की सरहद के करीब आने वाली अचानक सैलाबी लहरों और ज़मीन सरकने के बायस हलाकतों की तादाद बुध को जारी किए गए सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक बढ़कर 1,130 हो गई है, जबकि तकरीबन 4,500 अफराद ताहाल लापता हैं। नेपाल की कौमी अथॉरिटी बराए आफात का कहना है कि 26 अगस्त को मुल्क में शदीद सैलाब के बाद अब तक 1,114 लाशें बरामद हो चुकी हैं, जबकि 292 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 3,916 लापता हैं। हुकाम का कहना है कि सैलाब ज़दा इलाकों से तकरीबन 12,000 अफराद को बचाया गया है, जबकि तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद के लिए फ़ौज और पुलिस समेत 21,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक नेपाल में सैलाब से तकरीबन 16 लाख अफराद मुतासर भी हुए हैं। शिनहुआ न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि इसी आफत में चीन में कम अज़ कम 16 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 546 लापता हैं। रियासती खबर एजेंसी के मुताबिक चीन में लापता अफराद में 261 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं।
0: जॉन ट्रस्ट ने एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव का अहदा संभाल लिया। उन्होंने एक ऐसी कंपनी विरसे में मिली है जो स्मार्टफोन मार्केट पर तो राज करती है लेकिन मसनू जहान पर अपने हरीफों से पीछे है। इस मुंतकली के साथ ही टिम कुक का 15 साल दौरे इकतदार खत्म हो गया। एप्पल की सप्लाई चेन बनाने वाले ऑपरेशन के माहिर की जगह अब इस इंजीनियर ने ले ली है। उसने कंपनी का हार्डवेयर डेवलपमेंट की क्यादत की थी। टिम कुक ने अमले के नाम एक मेमो में अपने जानशीन की तारीफ करते हुए लिखा कि बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं दुनिया को बदलते हुए मसनूआत तैयार करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही इस तरह तुर्किया से खबरें खत्म हुई।

क्या आप जानते हैं कि जिस ट्रेडमिल को आप हर रोज जिम में इस्तेमाल करते हैं उसकी तारीख क्या है? 1800 की दिहाई में कैदी रोजाना 6 घंटे इन मशीनों पर गुजारते थे। वो माउंट एवरेस्ट की आधी ऊंचाई जितना सफर रोजाना पैदल तय करते। एक तशद्दुद के आले से लेकर फिटनेस मशीन बनने तक ट्रेडमिल की स्याह तारीख अब शुरू होती है। ट्रेडमिल खास तौर पर खेल और फिटनेस के लिए आजमी मशीन है। आजकल जो मशीन जिमों की जीनत बनी हुई है, माजी में वो कैदियों को सजा देने के लिए इस्तेमाल होती थी। आज हम जानान बिलगिजी और नाज इरम उस्तुंदा के इस मौजू पर बात करेंगे जो उन्होंने TRT न्यूज के लिए लिखा है। तो आइए सुनते हैं ट्रेडमिल की ये दिलचस्प कहानी। ट्रेडमिल्स को 1800 की दिहाई में बरतानवी कैदियों को सजा देने के लिए बनाया गया था। उस दौर में बरतानवी जेलों का निज़ाम इंतहाई अबतर हालत में था। फांसी और जिलावतनी पसंदीदा सजाएं थीं। कैदियों को इंतहाई गंदे खुलियों यानी काल कोठरियों में बंद करके दुनिया से अलग थलग रखा जाता था। इस सूरत हाल को बदलने के लिए कुछ रजाकारों ने मदद करने की कोशिश की। इसके नतीजे में ट्रेडमिल जैसी कैदियों की इसलाह के नए तरीके सामने आए। ट्रेडमिल को हमारे जिंदगियों में 1818 में एक बरतानवी इंजीनियर सर विलियम क्यूबिट ने मुतारिफ करवाया। ताहम ट्रेडमिल बनाने का मकसद सेहतमंद जिंदगी गुजारना या चर्बी पिघलाना नहीं था। ट्रेडमिल को एक तशद्दुद के आले के तौर पर डिजाइन किया गया था। जब क्यूबिट ने सेंट एडमंड्स जेल में कैदियों को बेकार और सुस्त बैठे देखा तो उनके जहन में एक दिलचस्प ख्याल आया। उन कैदियों की जिस्मानी ताकत को इस्तेमाल में लाया जा सकता था और उनसे ज्यादा सख्त सजा का काम लिया जा सकता था। चुनांचे क्यूबिट ने पहली ट्रेडमिल डिजाइन की। पहली ट्रेडमिल दरअसल एक बहुत बड़े गोल घूमने वाले पेज की तरह थी जिस पर एक दर्जन के करीब कैदी एक साथ दौड़कर उसे घुमाते थे। ये सीधा दौड़ने के बजाय मुसलसल सीढ़ियां चढ़ने जैसा था। कैदियों के लिए मुसलसल हरकत करना जरूरी था क्योंकि अगर वो रुकते तो नीचे गिर जाते। उनकी इस हरकत से गंदम पीसने, पानी खींचने या कानों में ताजा हवा पहुंचाने के लिए जरूरी तवानाई पैदा होती थी। कैदियों के अलावा हर कोई इससे फायदा उठा रहा था। सरासर अजाब। इस इजाद के बाद अगले 10 सालों में 50 बरतानवी और इतनी